0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

ना विजय चौहान।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। चूंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो जाहिर सी बात यह है कि हम समुदाय से लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं, उनकी बातें हम जन जन तक पहुँचाते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, या कुछ गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, या कुछ और, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में मैंने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो किस तरीके से इस माहौल में, यानी कि वकालत को वो बैलेंस रखते हैं और अपने सिंगिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं। आप गामा टू ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू सर, गगन जी, थैंक्स अ लॉट।
3: काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और मैं ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पहले हमारी फोनिक बात हुई और उसके बाद हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये सच है कि इंसान जब कोशिश करता है तो वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती हैं। तो एक बार पुनः आप सबका, आपकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, तो इसलिए मैं सबका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: थैंक यू गगन जी।
3: तो नरेंद्र सर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका फील्ड है, आप पेशे से लॉयर हैं और सिंगिंग आप बाय प्रोफेशनली गाते हैं या बस शौकिया गाते हैं, या यूं कहें कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
4: थैंक यू सर। आई एम सिंगिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 इन डॉक्टर एम एल शर्मा मॉन्टेसरी स्कूल, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। मेरे पिता, जो कि स्वर्गीय राज कपूर और स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो वो उस दौरान कैसेट्स लेके आते थे, आन आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, उस दौरान उनकी फेवरेट मूवीज रही हैं, देखते आए हैं। उस समय हमारे यहाँ टेप रिकॉर्डर होता था सर
3: जी,
4: तो मैं स्वर्गीय मुकेश जी व रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने सुनकर बड़ा हुआ सर। थोड़ा बड़ा हुआ तो 10th क्लास के दौरान MS इंटर कॉलेज सिकंदराबाद में NCC ज्वाइन की। 11th में NCC में सीनियर अंडर ऑफिसर रहते हुए आई हैव गॉट मैनी अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, अटेंडेड ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन हेल्ड एट सापुतारा गुजरात एंड गॉट बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन इन 1993
3: जी,
4: एंड ऑल्सो बी सर्टिफिकेट ऑफ NCC 94 में ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग एंड ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में, एंड अवार्डेड बाई कर्नल एसन थ्रॉड, जो उस समय वहाँ ट्रैक मैनेजर थे। इट वॉज नेशनल लेवल का ये
3: कॉम्पिटिशन था?
4: कॉम्पिटिशन था सर।
3: तो यू कह सकते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत हुई।
4: यस सर।
3: ये आपको विरासत में मिला है।
4: यस
3: क्योंकि
4: सर,
3: आपके फादर भी म्यूजिक का शौक रखा करते थे। उस तरीके से फिर आपको गाने का मौका मिला। जहां पर भी आपको मौका मिला वहां आपने चौका मारा। जी जी,
4: जैसा कि नाम में ही है, ऑल इंडिया ट्रैक 1994, आई गॉट एनसीसी सी सर्टिफिकेट एज सीनियर अंडर ऑफिसर इन बी ग्रेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉलेज में हर नेशनल फेस्टिवल पर 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो
3: आप गाते थे?
4: नहीं सर, देशभक्ति के गीत। और डिग्री कॉलेज में 95 में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते वहाँ मेरी परफॉर्मेंस सर जरूर रहती थी।
3: ओके ओके ओके, तो मतलब ये तो स्कूल कॉलेज की बात रही
4: सर,
3: तो इस तरीके से वहाँ से आपकी शुरुआत रही। उसके बाद
4: फिर संगम में सर मैं फर्स्ट प्राइज जीता 96-97 में, अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार गौर, वो मुझे प्राइज उन्होंने मुझे दिया था सर।
3: जी जी।
4: और 2001 में नीलम रिकॉर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरा फर्स्ट एल्बम सर रिलीज हुआ।
3: ओह ग्रेट।
4: ये दिल मांगे मोर,
3: तो
4: जैसा कि टाइटल है ये दिल मांगे मोर, उसमें था ये दिल मांगे मोर तेरा ही प्यार, ये दिल

0: दीदार, ये उसी गाने
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक शुरुआत रही, राइट?
0: ये एल्बम काफी सेल हुआ उस दौरान यूके एंड पाकिस्तान।
1: अच्छा, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब यूट्यूब पे अगर लोग आज भी सर्च करें तो वो डेटा आपका मिल जाएगा।
0: मिल जाएगा,
1: वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फिर शुरुआत क्या रही?
0: बेदर्द सनम मेरा एक एल्बम आया, काफी वो भी काफी चला था इस दौरान, स्टेज परफॉर्मेंस चलती रही। 2002 में ग्रेटर नोएडा आया, प्राधिकरण सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम स्टार्ट किया सर। 2004 में ग्रेटर नोएडा कार्निवल गायन में आई गॉट फर्स्ट प्राइज सर।
1: ओह ग्रेट।
0: उस समय ब्रजेश कुमार जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी सी।

0: होते जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं, और 2006 में कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली इंटर कॉमेट 2006 के नाम से मिस्टर ब्रायन मलिगन जो तब कीनोट स्पीकर थे
1: जी
0: और क्रिएटर हैं मलिगन कॉन्सेप्ट के वर्ल्ड में
1: जी,
0: ही इज अ न्यूजीलैंडर, गाना सुनकर सर वो बहुत खुश हुए, मुझे स्टेज पर बुलाया और गले लगाया, जिसको डॉक्टर्स मिलने में पूरी लाइफ निकल जाती है फिजियोथेरेपी को लेकर के, वो क्रिएटर हैं बिकॉज वो मलिगन कॉन्सेप्ट के नॉन इन्वेसिव है,
1: मतलब वो एक खुशी का लम्हा था आपके लिए।
0: यस सर, मेरे लिए
1: वो किसी अवार्ड से कम नहीं था,
0: अवार्ड से कम नहीं।
1: तो मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत होती रही।
0: यस सर,
1: आप गायन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते रहे, अवार्ड आपको मिला, लोगों ने उस काम को सराहा। तो उसके बाद की अगर मैं
0: और सर मैं बीच में
1: जी जी
0: कहना चाहूंगा
1: जी,
0: इस हिंदी इंग्लिश पैरोडी सॉन्ग पर बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सर।
1: कौन सा गुनगुनाएंगे आप हमें श्रोताओं के लिए?
0: डेफिनेटली सर, इन कोलैबोरेशन बाय कैपरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल थेरेपी दिल्ली एंड एसपीजी इंस्टीट्यूट देहरादून ने संयुक्त रूप से सर इसको आयोजित किया था
1: जी।
0: श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट, ओनली दे दे ओवर प्रेशर, ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है जो मलिगन कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है, सिखाता है सब डॉक्टर्स को। ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट, ओनली दे दे ओवर प्रेशर, बाई

0: It should be sustained.
1: क्या
0: follow the treatment plan. Back the movement plan.
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है मिस्टर नरेंद्र, आपके साथ हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आज आपसे आप ही की बात हो रही है, आपकी फील्ड की बात हो रही है. और ये तो एक शुरुआत रही कि जिस तरीके से आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कब कदम रखा, कब अपने आप को आप आगे लेकर गए और क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे ज़रूर. यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंदाज में हम म्यूज़िकल ब्रेक की ओर चलें. कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो अक्सर आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहते हो.
0: नजर

0: मत कहो।
1: चलिए सर, इस गाने को हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छे गाने का आपने चुनाव किया है और इस गाने में बहुत अच्छा एक संदेश भी छुपा हुआ है। तो यही गाना लिसनर्स हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनशादा 90.8 FM पर, ये गाना आप सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए और उसके बाद झट से फट से जुड़ जाएगा सुनशादा 90.8 FM पर। मैं हूं गगन और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पेशे से सिंगर हैं और जिनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनशादा 90.8 FM।
2: नजर वो जो दुश्मन

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक गाना हमारे लिए नजर किया, हमारे लिए गुनगुनाया, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरी आदत है। तो एक बार फिर से नरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ये जो गाने जब आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वाकई दिल को सुकून देते हैं ये गाने। इसमें एक मीनिंग है, कहीं संदेश छुपा हुआ है। तो क्या लगता है कि आज के समय में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं?
1: यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे डीप ब्रीथ जैसा फील होता है, प्राणायाम
0: ग्रेट
1: जैसा फील होता है। मेरा पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी है। तो इस बीच वन इंडिया में गाने का मौका मिला, 2015 की बात है सर। और टाइम टू टाइम बीच में फिर अधिवक्ता दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर होली के आयोजनों में मेरा
0: गाने का मौका मिलता रहा।
1: जज वगैरह जो बीच बीच में रहे, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी जो आजकल जस्टिस हाई कोर्ट हैं, एवं डिस्ट्रिक्ट जज श्री अभय कुमार जी,
0: मतलब इस तरीके से आपको मौके मिलते रहे।
1: कोई भी वेलकम पार्टी है, कुछ भी है,
0: ओके ग्रेट ग्रेट,
1: कप्तान साहब, उधर DIG साहब, ये सब
0: मतलब प्रशासन के बीच में आप जाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। घर की अगर मैं बात करूं तो घर में किस तरीके से माहौल रहा, ये आपने हमें बताया फादर के बारे में। कभी सपोर्ट मिला, या कभी ऐसा होता है कि पुराने समय की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का समय अगर हम देखें सर, तो आज तो लोग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप गाने के लिए ट्रेनिंग लीजिए, या एक म्यूजिक का गुरु हो आपके पास होना चाहिए। तो आपको घर से कैसा माहौल मिला, कितना सपोर्ट मिला सिंगिंग के क्षेत्र में, या बस आप सिंगिंग छोड़िए आपके बस की बात नहीं है?
1: हमारे कैसा रहा? ऐसा नहीं था सर। हमारे टाइम में हमारे फादर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, और गाना उनको मतलब गाने के मामले में टू बी फ्रेंक में कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल भी
0: सपोर्ट नहीं थे। क्योंकि पुराने समय में होता नहीं था, आज के समय में तो बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को।
1: मेरी मदर हालांकि मुझे सपोर्ट कर देती, और इसी दौरान जहाँ जहाँ मैं सीखने भी गया तो वहाँ से मुझे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 10-12 ईयर्स में हारमोनियम पे रियाज किया, 2002-2010 ये सब रियाज हुआ, उससे पहले भी मेरा चल रहा था हारमोनियम वगैरह। और मेरे कई गुरु रहे हैं, नारायण मास्टर जी रहे हैं इधर, फिर और गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बल्कि कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले कि हमारा ऐसा कोई शिष्य अभी इस तरह।
0: क्या कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे बॉलीवुड का रुख करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां रही कि जिसकी वजह से आप आगे जाने का मौका आपको नहीं मिला?
1: परिस्थितियां रही, हालांकि जब मैं ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन सापुतारा में था, तो ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन करके बोले, नरेंद्र कहां तुम्हें तो रेडियो में होना चाहिए।
0: और आज आप रेडियो पर हैं। कह सकते हैं कपिल शर्मा जिस तरीके से पूछते हैं, क्या आपने सोचा था कि गगन के सामने आप बैठे होंगे कभी?
1: नहीं सोचा था।
0: जी
1: कर्नल साहब मिस्टर एसएन थ्रॉट 92 में मुझसे बोले थे, इस दौरान जहां जहां मैं परफॉर्म किया, स्टेज पे मैं रहा हूँ अक्सर, फ्लावर शो ग्रेटर नोएडा, इधर फाउंडेशन डे दिसंबर में होता है, ग्रेटर नोएडा का कार्निवल होता है, उसमें एज ए जज भी रहा हूँ, बीच भी फिलर भी रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस देता रहा हूँ, तो काफी
0: एप्रिसिएशन
1: मिली।
0: चलिए सर,
1: भोजपुरी के मुझे ऑफर थे दो।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिल्म का भी ऑफर था, एल एच खान साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी को लेकर के, वो लिरिक्स उन्होंने लिखे थे, उन्होंने मुझे कई बार दिल्ली जब यहाँ आते थे तो मैं मिलता था अक्सर उनसे, और अपॉर्चुनिटी थी, बट फैमिली का भी थोड़ा मुझे था, अपने आप को स्टैंड भी करना था।
0: यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातें जो जारी हैं लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि बातें थोड़ी ज्यादा सी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आप ही की पसंद का एक और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनवाना चाहते हैं, और उसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू आगे करेंगे।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए।
0: क्या बात है,

बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं यकीनन इस गाने को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी गाते झूमते मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और ये फिल्म जो है कलाकार फिल्म है, और नीले नीले अंबर पर वाकई बहुत अच्छे बोल है, किशोर कुमार साहब ने इस गाने को गाया है और इंदीवर साहब का लिरिक्स है, और साथ ही साथ मनोज कुमार के जो बेटे हैं उस फिल्म में वो एक लीड एक्टर में रहे हैं, साथ ही साथ यूं कहें कि श्रीदेवी, और मतलब कंप्लीट एक पैकेज है। बहुत ही खूबसूरत गाना है सर, मेरे दिल के बेहद करीब ये गाना है। बस लिसनर्स इस गाने को गाइए, गुनगुनाइए, सुनिए, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं लेकिन बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और कई एल्बम्स में इन्होंने काम किया है। खुद की एल्बम भी इन्होंने रिलीज की है,
1: ये दिल मांगे मोर,
0: बेदर्द सनम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कुछ जो लिसनर्स हैं जरूर आपको फाइंड आउट करेंगे यूट्यूब पर देखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें आपसे हो रही थी कि अच्छी जगह आपको मौका भी मिला लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो इस समय की अगर मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं ख्वाब था वो जो दबा हुआ था उस वक्त, अगर आज आपके सामने मौके आते हैं तो कितना उसको आप कैश कर पाते हैं, कितना आप उसको भुना पाते हैं, या कहीं सोचा है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुंबई की ओर रुख करना चाहिए?
1: अभी मेरा ये कंटिन्यू है म्यूजिक, और मेरा फेसबुक पेज मैं अभी बनाया हुआ हूँ तो उसमें लाइव मैं सैटरडे संडे आता रहा हूँ।
0: ग्रेट।
1: और कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो स्टेज परफॉर्मेंस मिलती हैं मैं उसको उनको करता रहा हूँ
0: जी।
1: और फैमिली के कुछ कारणों की वजह से बीच में मैं गैप हो गया था मेरा इसमें, तो मुझे अपने आप को स्टैंड करना था। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ तो
0: ओके,
1: मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सर।
0: वेरी गुड सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कितना तालमेल बैठा पाते हैं वकालत करते वक्त, या यूं कहें कि आपका जो पेशा है, आप पेशे से वकील हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप समय देते हैं और आप जैसे खुद कह रहे हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा यकीनन मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये जो तालमेल है

0: कैसे रख पाते हैं साथ साथ फैमिली भी?
1: बेसिकली मेरा रहता है सर, जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, आई एम नॉट ए लॉयर, आई एम नॉट ए क्रिमिनल एंड सिविल एडवोकेट. बेसिकली हमारा डीड्स का काम होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क होता है, तो उसमें मेरे पास टाइम है, मैं मैनेज कर लेता हूँ. कई बार हमारे एलोटी भी, जब पता उनको चलता है कि मैं सिंगर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखता हूँ, डीलिंग भी मेरा व्यवसाय है थोड़ा बहुत, तो कहते हैं नरेन जी क्या क्या है आप,
0: हरफन मौला है, शायद ही कोई फील्ड आपका बचा हो.
1: अच्छा गाते हैं जी, ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मैं सब ये मैनेज
0: कर लेता हूँ.
1: इसमें 10 to 5 का मेरा कोई कंपलसरी जॉब नहीं है.
0: ओके ग्रेट. फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली में मैं बात कर रहा हूँ आपकी वाइफ का, बच्चों को तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बच्चे बड़े ट्रस्ट के साथ आए हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट बने हुए हैं, कोई अनन्या को मैं देख रहा हूँ ये वीडियो बना रही हैं, और ये जो आपके छोटे सुपुत्र हैं, इन्होंने अभी आपका टेक्निकल वाला पार्ट हमें यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने असिस्ट किया, तो किस तरीके से माहौल मिलता है, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली?
1: सपोर्ट करते हैं लाइव में, मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, बैकग्राउंड देना, साउंड सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, ट्रैक प्ले करना, ट्रैक सेलेक्ट करना, यूट्यूब से ट्रैक को सेलेक्ट करना, तो जो मुझे गाना होता है, जो उस दिन मैं डिसाइड करता हूँ, उन सबको वो डाउनलोड करके रखते हैं, एंड देन फाइनली मैं उस पर गाता हूँ, तो इन लोगों की काफ़ी सपोर्ट रहती है. एंड वीडियो शूट करना, बीच बीच में वहाँ का एनवायरनमेंट देना, उस तरह का लाइव का.
0: ओके okay. और मैडम क्या सपोर्ट करती
1: है? मैडम की भी सपोर्ट मुझे रहती है,
0: तभी आप बाहर निकल पाते हैं. जी छोड़ो गाना बजाना है, अब तो उम्र निकल गई मियाँ आपकी. चलिए मैं बच्चों के बारे में जान लेता हूँ. अनन्या आप मुझे बताइए, कैसा लगता है जब आप पापा को सपोर्ट करती हैं या पापा के साथ आप जाती हैं? क्या लगता है कि पापा को और आगे जाना चाहिए, या आपको लगता है कि मुझे भी सिंगर बनना है?
2: हाँ जी अंकल, कई बारी होता है कि लाइक पापा एज अ जज होते हैं, तो मैं जाती हूँ मोस्टली साथ में, या भाई चला जाता है वीडियो शूट या उनकी हेल्प के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से. लाइक उनकी लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है फेसबुक पे, तो भाई हेल्प करता है, मैं वीडियो शूटिंग में कभी कभी हेल्प करती हूँ. हाँ तो अच्छा लगता है ऑफकोर्स.
0: अच्छा हाँ. तो क्या कभी दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे भी चुनाव करना है? अभी स्टडी किस क्लास के स्टूडेंट हैं?
2: अभी 10th.
0: अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, शारदा यूनिवर्सिटी का मास कॉम का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम जैसा टैलेंट भरा हुआ है. मास कॉम का रेडियो भी है, टीवी भी है, अगर आपको कभी लगता है तो जरूर, मैं तो कहूंगा कि एक बार जरूर यहाँ विजिट करेगा, यहाँ का माहौल देखेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली कि लोग देख ही रहे हैं, और फैकल्टी से आप मिलिए, लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो मैं तो इस बात से यही कहूंगा कि आप जरूर सोचिएगा जरूर अगर आप पापा के साथ आते जाते, क्योंकि एक नो डाउट कि चकाचौंध की दुनिया है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, फिर लगता है कि नहीं यार इसका एक कोर्स कर ही लिया जाए, तो उसके बाद हम कुछ जरूर करेंगे, खास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम सुन रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जेवर की तरफ हमें फिल्म सिटी मिलने जा रही है. आपके छोटे भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा. क्या नाम है आपका?
3: माय नेम इज आर्यन.
0: आर्यन, आर्यन मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है पापा के साथ जब आप जाते हैं या जबरदस्ती ले जाते हैं आर्यन को? नहीं पापा मेरा मन नहीं है, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है. कहाँ ले जाते हैं आप? हा?
3: नहीं अंकल, पापा बहुत अच्छे हैं,
0: बहुत अच्छे हैं, वेरी
3: गुड. सपोर्ट करने में अच्छा लगता है.
0: आप पापा को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है या पापा का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता है. मम्मा के बारे में बताइए थोड़ा.
3: मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है पापा को.
0: चलिए वेरी गुड सर, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. यहाँ पर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, उसके बाद आखिर में एक छोटा सा संदेश आपसे जरूर लूंगा. तो कौन सा एक गाना है जो आपके और दिल के बेहद करीब है, जो हमारे लिसनर्स को आप सुनाना चाहते
1: हैं? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, और इस दौरान तो क्या कहते हैं टाइम पर कुछ सिलेक्शन.
0: कोई बात नहीं, जो भी. हाँ प्लीज सुनाइए.
1: एक मैं रफी साहब का 2 लाइन गुनगुना रहा हूँ.

0: है जिंदगी।
1: क्या बात,
0: कल हम कहां तुम कहां।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना लिसनर्स, मैं आपके लिए नजर करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी साहब के बोल, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, सिंगर जिस तरीके से सर ने हमें बताया रफी साहब और साथ साथ आर डी बर्मन, और स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो और रिश्ते में तो हाँ अमिताभ बच्चन साहब, और शान फिल्म ये रही 1980 में आई, और गाने के जो बोल हैं यम्मा यम्मा, ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको उस प्रोग्राम को सुनकर मजा आ रहा होगा, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 FM।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि सच कहते हैं कि जान है तो जहाँ है सारी मुश्किलें आसान है। कहते हैं कि ईश्वर से जब आप कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले यही मांगेगा, जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। जब आप हेल्दी रहते हैं तो आप गाना अच्छा गा सकते हैं, दूसरा काम बेहतर कर सकते हैं, किसी काम को खूबसूरत अंजाम तक आप पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे इंसान, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, इनके इस पेशे के बारे में जानना चाहता हूं। चूंकि रियलिटी शोज बहुत आ रहे हैं, लोग अपने आप को वहां लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और खासकर अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों का जो एक यूं कहें कि कॉम्पिटिशन है, लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हताशा भी है, परेशानियां भी हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इस करंट सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
1: बच्चों को डेफिनेटली आई वुड लाइक कि मैं भेजना चाहूँगा, और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में, और कंपटीशन होना भी चाहिए, और बच्चे प्रिपेयर करें उस हिसाब से आगे बढ़ें, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपना जो शौक है उसको बनाए रखें एंड कंपटीशन से ना डरें। यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस इफ यू आर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
0: क्या बात है। सो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं तो डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करता है। तो फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है नरेंद्र सिंह जी, मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन बस जाते जाते ही कहना चाहता हूँ आपसे बात करके, आपकी फैमिली से बात करके, कि जो बच्चे हैं यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अपने मन की बात।
1: मैं यही कहना चाहूंगा, अभी टू लाइंस, बीच में मैं फेसबुक पर अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, मेरा फेसबुक पेज भी है जो कि
0: किस नाम से वो फेसबुक पेज?
1: नरेंद्र सॉन्ग्स, नरेंद्र सॉन्ग्स के नाम से है। तो सर्च करेंगे तो आपको खुल जाएगा वो। और ये मैं दो लाइन आपको सुना रहा हूँ अभी ऑन फ्रेंडशिप
0: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही
1: याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दिस इज फॉर यू ऑल फ्रेंड्स।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र। लिसनर्स, इस गाने के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, इजाजत लेता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नरेंद्र कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
1: थैंक्स अ लॉट।
0: सो फाइनली, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से खुदा से पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे मंगलमय गुजरे कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:08 हो चुके हैं, 2 तारीख है यानी कि मई का दूसरा दिन और वक्त हाथ से रेत की माफिक फिसलता चला जाता है, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। ऑन रोड अगर मैं बात करूं तो आज ट्रैफिक थोड़ा सा कम है लेकिन सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है यानी कि यातायात के नियम कानून का अच्छी तरीके से पालन करेगा, है ना। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे मौसम में बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए और जो बेजुबान जानवर हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएगा क्योंकि उस पौधे के वट वृक्ष रूप तक, जाहिर सी बात है कि जब वो पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, उसकी जो शाखाएं हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में हमें ठंडक देती हैं, हम वहाँ खड़ा होना चाहते हैं, हम अपनी गाड़ी को वहाँ पार करना चाहते हैं, तो हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, हमें भी कुछ सोचना होगा, हमें भी समाज के लिए कुछ अच्छा करना होगा, बेहतर करना होगा। साफ सफाई का भी ख्याल रखिए क्योंकि सच कहते हैं कि साफ सफाई में ही ईश्वर का वास होता है और जहां साफ सफाई होती है कहते ये भी है कि वहां लक्ष्मी का वास होता है। सच बात तो यही है, यकीन मानिए कि वहां कोई बीमारी होगी नहीं और जो आपके पास तरक्की है बरकत है उसमें इजाफा होता ही चला जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमारे बुजुर्ग हमें समझाया करते थे। क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ दिन की शुरुआत, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
2: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
3: माँ जी, मुझे टीबी है।
2: टीबी और छुपा कर रखा?
3: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दे।
2: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हमारे आसपास और क्या खास उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि जैसे मई का महीना शुरू होता है, मई का महीना, अप्रैल का, मई का, जून का, मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कि जैसे महीने की पहली तारीख आती है, हाँ, हम सबको इंतजार रहता है रुपयों का, पैसा का, घर वालों को भी इंतजार रहता है, लेकिन इंतजार रहता है उन कंपनियों को जहां से रुपए में थोड़ा इजाफा होता है, यानी कि पेट्रोल डीजल की बात करूं, LPG सिलेंडर की मैं बात करूं, या कुछ और, कुछ ना कुछ नए नियम कायदे कानून लागू हो जाते हैं, जैसे कि नए बदलाव देखने को मिलेंगे, रसोई गैस की कीमतें, UPI सुरक्षा, ATM शुल्क और ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम शामिल होने जा रहे हैं 1 मई से। LPG सिलेंडर के बारे में बात कर लें तो तेल कंपनियों ने गैस की कीमतों में थोड़ा सा संशोधन किया, यानी कि अब जो भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि जिससे दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपये तक पहुंच गई है। और OTP बेस्ड डिलीवरी, यानी कि अब शहरों में LPG सिलेंडर की डिलीवरी के लिए DAC यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या OTP अनिवार्य कर दिया गया है। और बुकिंग के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा और जिससे डिलीवरी बॉय को बताना बहुत ज़रूरी होगा। ATM में निकासी से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि RBI के नए निर्देशों के अनुसार फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद ATM से कैश निकालने पर अब 21 रुपये के बजाय 23 रुपये शुल्क देना होगा। बहुत सारी अपडेट्स हैं, कुछ बची हुई अपडेट्स के बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर सुरशादा 90.8 FM। पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गड्डी पूरे होशो आवाज में चलाएगा कहो ना कहो फ्रॉम द मूवी मर्डर, आमिर जमाल की आवाज, सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि 1st ऑफ मई से बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके बारे में जानना समझना

बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात आपको की, आपको बताया कि एलपीजी सिलेंडर में यानी कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया है, और एटीएम से जब आप निकासी कर रहे हैं तो आरबीआई ये कह रहा है कि फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद एटीएम से कैश निकालने पर अब 21 रुपए के बजाय 23 रुपए शुल्क देना होगा। और यूपीआई और डिजिटल सुरक्षा के बारे में बात करें तो बात निकल कर ये सामने आ रही है कि डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA को सख्ती से लागू किया गया है, और अब UPI और नेट बैंकिंग लेनदेन के लिए OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है। और SBI क्रेडिट कार्ड नियम यानी कि इसमें बात निकल कर ये सामने आ रही है कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स जैसे कि BPCL SBI कार्ड के फीस स्ट्रक्चर और लेट पेमेंट चार्ज में बदलाव किया गया, यानी कि 100 से 500 तक के बकाया पर 100 लेट फीस लगेगी। ऑनलाइन गेमिंग नियम में भी कुछ बदलाव हैं, यानी कि जो मनी गेम्स और ई स्पोर्ट्स की निगरानी करेगी यानी कि गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI का गठन किया गया वर्ष 2026 का ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि मनी गेम्स और ई स्पोर्ट्स की देखरेख करेगी, निगरानी करेगी। और बड़े नकद लेन देन पर पैन यानी कि एक वित्तीय वर्ष में रुपए 10,000 लाख से अधिक के नकद लेन देन या किसी आयोजन में रुपए 1 लाख से ज्यादा खर्च करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कुछ नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, तो इसके बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। सुनो शारदा 90.8 FM, यही काम करता है कि हमेशा आपको अप टू डेट रखता है। निकिता गांधी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:38 हो चुके हैं। 2 तारीख है यानी कि मई की दूसरी तारीख, 2nd of May। वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं। 1st May से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे कि LPG के कॉमर्शियल दामों में इजाफा किया गया है और ATM की निकासी में भी इजाफा किया गया है। अगर जो लिमिट है उसको क्रॉस करते हैं तो पहले 21 रुपये चार्ज लगता था, अब वो 23 रुपये शुल्क आपको देना होगा। तो इसके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग नियम में भी, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 प्रभावी हो गया और ये एक गठन निर्धारित किया गया, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI का गठन किया गया और जो कि मनी गेम्स और ई स्पोर्ट्स की निगरानी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं NHAI के बारे में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। अक्सर लोगों ने देखा है कि, और अथॉरिटी ने भी ये चेक किया है कि जब आप टोल पर जाते हैं, टोल प्लाजा पर होते हैं, तभी आपका जो फास्टैग है तब आप उसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं, जबकि वो कहते हैं कि विंड स्क्रीन पर आपका जो फास्टैग है वो चिपका होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत कर रहे हैं और आने वाले समय में वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है या आपको डबल टोल देना पड़ सकता है ऑन द स्पॉट। तो ये बारीकियां इनको नजरअंदाज ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जो नियम कायदे कानून हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, उनके साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे या कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर आपको उसका हर्जाना देना होगा, फाइन देना होगा। और जब पनिशमेंट आपके सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत दिल दुखता है कि भैया डबल ट्रिपल पैसे जा रहे हैं।
1: 100 शर्त मंजूर, सिंगर्स पलक मुच्छल एंड मोहम्मद इरफान, म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय संजीव चतुर्वेदी, लेबल टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स लिसन टू इट ऑन योर सुरशादा 90.8 FM। 100

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसीलिए हमेशा आपको अप टू डेट रखता हूं। यूपी की यूनिवर्सिटीज में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और उसके बारे में जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पढ़ाई से एग्जाम तक क्या क्या बदलेगा, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं। और ये जो नई प्रणाली है, ये जो नए नियम कायदे कानून है, नकल, पेपर लीक और फर्जी परीक्षार्थियों यानी कि जो मुन्ना भाई जैसी समस्याएं, उन पर प्रभावी रोक लगाएगा, लगाम लगा कर रखेगा और उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में ये बहुत बड़ा तकनीकी मील का पत्थर साबित होगा। अब ये जो प्रणाली है किस तरीके से काम करेगी, तो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात, जानकारी हमने निकाली है। तो बात निकल कर ये सामने आ रही है कि अब केंद्रों पर जो सेंटर्स हैं, प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर वहीं पर प्रिंट किए जाएंगे और वहीं जो आंसर शीट है जिसको हम कहते हैं, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यानी कि वो जो जाँच की प्रक्रिया है वो भी डिजिटल माध्यम से कॉलेजों में ही की जाएगी। और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कॉपियों पर बार कोड, QR कोड और डमी नंबर लगाए जाएंगे। इससे होगा क्या कि कॉपी बदलने, गुम होने या किसी भी की कोई भी गड़बड़ी की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जो टीचर हैं, जो परीक्षक हैं, उनको भी ऑनलाइन ही प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी और कॉपियां उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे आने वाले समय बहुत समय और रुपया भी बचेगा। क्या बात है, धुरंधर फर्स्ट फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, शाश्वत सचदेव का म्यूजिक, शाश्वत सचदेव की आवाज, ऑडियो सुरक्षा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। दो दीवाने शहर में म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी लिरिक्स बाय कुमार म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा सो लेट्स एंजॉय इट केवल सुनो शारदा 90.8 एफएम।

एक गाना था कि दो दीवाने इस शहर में आबुदाना ढूंढते हैं। इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुरुशाता 90.8 FM पर। 9:52 हो चुके हैं, 2 तारीख है यानी कि मई की 2 तारीख। मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें तो मई में बारिश का धमाका होने के आसार है, ऐसी अपडेट हमारे सामने आ रही है। IMD का अलर्ट है, सामान्य से अपडेट्स ये सामने आ रही है कि सामान्य से ज्यादा बरसेंगे बादल और हीट वेव में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जब मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपकी सेहत पर भी, हमारी भी सेहत पर फर्क पड़ता हुआ नजर आता है, और खासकर अपने छोटे छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का, बेजुबान जानवरों का ख्याल रखें जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और जब नेचर का जिक्र मैं कर रहा हूं तो एक पौधा जरूर लगा दीजिएगा, जब आपको लगता है कि बारिश अच्छी हो रही है तो पौधा लगा दीजिएगा, और देखिएगा वही पौधा जब वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है वहां आप सुस्ताना चाहेंगे, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। मेरे इस लगाए हुए पौधे के नीचे लोग गाड़ी पार कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, ठंडी ठंडी छांव ले रहे हैं। और ऐसे मौसम में हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में साथ साथ, या यूं कहें कि गर्मी के मौसम में, लोग प्याऊ तक लगाते हैं, बेजुबान जानवर को पानी पिलाते हैं, भलाई के काम करते हैं। कहते हैं कि भलाई के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ईश्वर भी आपके साथ कहीं कुछ गलत होने नहीं देगा। लेकिन छोटी छोटी बातों पर हम क्यों नाराज हो जाते हैं, क्यों खफा हो जाते हैं? ऑन रोड रोड रेस की जो घटनाएं वो दिन ब दिन लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, आंकड़े हमें ये बता रहे हैं। लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी जनधन की हानि हो जाती है। सो प्लीज ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते समझदारी से काम लीजिए, अपना ख्याल रखिए। नेहा कक्कर, रोमी, अरुण एंड इक्का, रिक्रिएटेड तनिष्क बागची, लिरिक्स शब्बीर अहमद, ऑल ऑन टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स एंजॉय इट, ऑल ऑन सुरुशाता 90.8 FM।

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां, जब हमारी सेहत ठीक होती है तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। मान लीजिए अगर आप बीमार हैं तो आप जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और उन कामों की वजह से जो आपसे लोग जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो उनका काम भी प्रभावित होता है, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। घर में अगर बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं, कई बार उनका काम मारा जाता है, तो कितनी हानि होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे काम हमसे जुड़े हुए होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो उनका असर हम पर तो होता ही होता है, हमसे जुड़े अन्य लोगों पर भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसको सही कराने में पैसा लगता है और हम काम पर भी नहीं जा पाते तो वो भी हमारी हानि होती है, और जो हमारा पैसा बचा हुआ रखा है वो कहीं ना कहीं बीमारी को ठीक करने में लग जाता है और हमारे जो घर के अन्य काम हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तभी कहा है कि आपकी अगर सेहत अच्छी होती है तो आपको लाभ ही लाभ है, इसीलिए हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक बात पहुंचाते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें, अपना टीकाकरण करवाएं। और आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में खासकर हम बात करेंगे टीकाकरण की, क्योंकि टीकाकरण के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि टीका क्यों लगवाएं, इससे बुखार आ जाता है, दर्द होता है, और जब हम ठीक हैं तो टीका लगवाने की क्या आवश्यकता है, और भी बहुत तरह की बातें टीकाकरण के बारे में प्रचलन में हैं। तो इन्हीं सब भ्रम को तोड़ने के लिए और आप तक सही जानकारी पहुंचे कि टीकाकरण कितना ज़रूरी है हमें आने वाली गंभीर समस्याओं से, बीमारियों से बचाने के लिए, अपने नन्हे मुन्नों को बचाने के लिए, तो किस तरह से टीकाकरण काम करता है और हमें कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टीकाकरण से जुड़ी हुई हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन बातों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में टीकाकरण के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संजय गांधी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, और इनसे जानकारी ले रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च या सीफार की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके, बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं, जानते हैं बच्चे की जान बचेगी फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो भी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे, बच्चे को अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती हैं। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ।
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्प्लीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में? और दूसरी चीज, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
2: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है, और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
2: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
2: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
2: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते हैं। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दो दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
2: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है, कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन ये सब लॉन्च किए। तो कोई नई चीज आती है ना तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है। और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन्स की हम बात कर रहे हैं वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन्स तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है। तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया। तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूं कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
2: बिल्कुल करता है, जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा
2: सा। बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी।

0: आती हूँ क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है। माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगी। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और एनम की भी होती है, क्योंकि वो रोज हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
1: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है वेरी नाइस, लड़का हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवी बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज़ है। आशा दीदी लोग जो भी हमारी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है। लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे कार अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है? क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
1: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गाँव में लिया वो थे गाँव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहाँ के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
0: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते होते हैं जो हमारे

0: होते हैं ना, कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए। या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
1: सब दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना, उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से, कहते हैं ना, माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा। तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं, वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए, एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर। जब माए राशन लेने जाती है ना, वहाँ पर दूसरी माओ से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा, अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन, तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी, अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन ने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ, हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है, जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो, तो बहुत समझदार हैं माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है। माँ तो माँ ही होती है।
0: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है? किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद, सोच रहे हैं के बाद, एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रीअश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना, बार बार रीअश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे। और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रीअश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
0: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीज़ों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फ़ायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज़ को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाए। तो तीन चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना, उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है, जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा। कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
0: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
1: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आए माता पिता, अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के माध्यम से आपने जाना कि टीकाकरण हमारे जीवन को बचाने के लिए कितना जरूरी है। हमें अफवाहों में नहीं फंसना चाहिए, हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, आशा दीदी हैं, ANM बहन जी हैं, उनकी बात माननी चाहिए और अपने बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण गंभीर बीमारियों से हमको बचाता है। अगर हम टीकाकरण समय से नहीं करवाते तो हमें कहीं ना कहीं एक दिन पछताना पड़ता है कि काश हमने डॉक्टर साहब की बात मान ली होती, काश जो रेडियो पर कार्यक्रम आया उसमें जो बताई गई बातें हमने मान ली होती, तो शायद ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। तो हम आपसे एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों का ज़रूर टीकाकरण करवाएं समय पर। फिलहाल समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूँ सार, मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
5: नमस्ते दीदी।
4: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को, तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है, तो बोले कि लेके चलोगे सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ, तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
6: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में, उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और विभाग है जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतर विभागी जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग ना पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

योगेंद्र निमचाना द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

दोस्तों, बनी के चेहरे पे तो लाखों निशार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मेहरबानों, आज सत्यवादी की परीक्षा ली जा रही थी। स्वयं विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर के काशी में पहुंच गए। आवाज लगाई, इन्हें कोई खरीदने वाला हो तो सौदा करिए। मेहरबानों, कोई नहीं आया। तो देखिए, स्वयं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, हमें खरीदने वाला कोई हो तो हमें खरीदिए, और 60 भार सोना

0: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

दोस्तों समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का फेर और समय बदलते सज्जनों लगे ना कोई देर। मेहरबानों सत्यवान कि प्राण लेने के लिए यम के दूत आए, लेकिन सावित्री के तेज से वापस यमपुरी चले गए। महाराज उसके ललाट से वो ज्वाला दहक रही है कि जिसके आगे हमारी एक ना चली। मेहरबानों यमराज आश्चर्य में पड़ गए, वो कौन वीर है यमलोक में? मेरे मेहरबानों सत्यवान आखिरी बातें अपनी ब्याही से कर रहा था। मेरे मरने के बाद अगर तुझे मुझसे प्यार है तो सती हो जाना और स्वर्ग लोक में आके मेल मिलाना, और सती ना होना तो मेरे मरने के बाद जप गायत्री मंत्र कराना, गौ माता का दूध जप में अवश्य रखना। मेरे मेहरबानों इतने ही में यमराज क्यों नहीं आ जाते हैं? सत्यवान के प्राण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सावित्री हाथ जोड़ के यमराज के सामने खड़ी हो जाती है। महाराज मुझे विधवा करके मत जाओ, मेरी जवान अवस्था है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: रंजना, ओ रंजना।
3: जी जी जी, आ गई, मैं आ गई। ये लीजिए पानी। आज आप जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है,
3: मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
2: रुको, इसकी जरूरत नहीं है, ये लो।
3: ये क्या है?
2: तुम्हारा इनाम।
3: मेरा इनाम? क्या क्या है इसमें?
2: अब देखो तो सही, कैसा लगा इनाम, पसंद नहीं आया क्या?
3: अभी अभी ये क्या है, ये तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या है ये?
2: दिख नहीं रहा अंधी, डिवोर्स पेपर्स हैं।
3: आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मजाक कर रहे हैं ना, है ना अभी? प्लीज बोलिए ना, आप मजाक कर रहे हैं ना, आप ऐसा मत करिए।
2: ये तलाक के पेपर्स हैं।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज मजाक मत करिए,
2: निकल यहाँ से।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, अभी नहीं।
2: निकल जाए यहाँ से, ये पेपर उठाओ, निकल यहाँ से, निकल।
3: नहीं अभी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। हुआ क्या है पर मुझे ये तो बताओ पहले, अभी समझो ना मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा मत करो अभी, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, कैसे कहाँ रहूंगी, प्लीज अभी मेरे बारे में सोचो, मत करो ना, प्लीज ऐसा मत करो।
2: तुम जैसी बांझ औरत को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो अभी, प्लीज ऐसा मत करो।

0: यू सो मच ऑफिस से घर छोड़ने के लिए। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो मेरे, सच में।
1: अरे नहीं, थैंक यू सो मच तुमने मुझे अलाउ किया बल्कि अपने आप को यहाँ तक छोड़ने के लिए।
0: ओके बाय।
1: ओके बाय बाय, टेक केयर। रुको रंजना, रंजना, अरे रुको रंजना, रुको रंजना, कुछ बात करनी थी तुमसे। रंजना, वैसे तो मुझे लंबी बात करने की आदत नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं, बस रंजना, विल यू मैरी मी?
0: आशीष, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम जानते हो ना, मैं शादी नहीं कर सकती। अगर हमने शादी कर ली तो हम फैमिली स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई भी दिक्कत आए।
1: देखो रंजना, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम हाँ या ना में जवाब दो प्लीज रंजना, प्लीज।
0: ऑफ कोर्स यस आशीष, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें मना कर भी नहीं पाऊंगी।

0: अरे रंजना, तुम ठीक हो? क्या हुआ, इतनी थकी थकी लग रही हो?
1: कुछ नहीं, सब ठीक है।
0: अरे कुछ नहीं कैसे नहीं, तुम्हें देख के ही पता लग रहा है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम देखो इतना लड़खड़ाती हुई चल रही हो। अरे पहले बैठो तो सही, बैठो यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है?
1: पता नहीं, बस एक हफ्ते से कुछ थकान सी महसूस हो रही है। ऐसा कुछ मतलब अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ मैं। चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी तबीयत हो रही है, कुछ कमजोरी सी भी लग रही है। शायद गर्मी का महीना है ना, इसलिए हो रहा होगा।
0: अरे एक हफ्ता हो गया और तुमने मुझे एक हफ्ते से बताया भी नहीं। रंजना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम पागल हो? चलो डॉक्टर के पास, तुम पागल हो, जल्दी चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ।
1: डॉक्टर के पास? नहीं आशीष, डॉक्टर के पास क्यों जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी।
0: अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो डॉक्टर के पास।
1: नहीं आशीष, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी थोड़ी सी दवाई खाऊंगी और फिर ठीक हो जाऊंगी।
0: अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि चलो डॉक्टर के पास। अरे जल्दी चलो, जल्दी उठो, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। रंजना, रंजना, अरे रंजू।
1: अरे आ गए तुम?
0: हाँ रंजू आ गया, ये लो पकड़ो।
1: आशीष, ये क्या है आशीष?
0: तुम खुद ही खोल कर

0: देख लो ना,
1: ये तो मेरी रिपोर्ट है। मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है।
0: हाँ रंजना, हाँ।
1: यानी कि आशीष, मैं माँ बनने वाली हूँ।
0: हाँ रंजना, बिल्कुल तुम माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो।
1: पर ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये रिपोर्ट गलत है। मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? मैं तो माँ हूँ।
0: रंजना, पुरानी बातें रिपीट मत करो बस।
1: लेकिन ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये गलत है। मैंने पिछले 3 सालों से कभी कंसीव किया ही नहीं। अब कैसे?
0: रंजना, तुम कभी भी बांझ नहीं थी। ऐसे कमजोर लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए ऐसा करते हैं। तुम कभी भी बांझ नहीं थी।
1: लेकिन,
0: अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, जो होना था वो हो गया। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या फिर बेटी?
1: बेटा। और तुम्हें?
0: बेटी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। Then stay hydrated to keep your skin as well as your immune system healthy. So proper hydration is important. अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए। Include vitamin C rich fruits at this point of time because इस time पे viral infections are very common. अपनी immunity का ध्यान रखिए। Regular exercise जरूर कीजिए, वो भी आपकी immunity के लिए important है। Apart from that, take care of your skin. बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है, आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं, अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाए जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।
1: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
2: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
1: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
3: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
1: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
3: जी,
1: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
3: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
1: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
3: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
1: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
4: शिपना?
1: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
5: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। दोस्तों, आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, जो कि संभव हो पाया है CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा। और ये खास कार्यक्रम है जहां उद्देश्य है पठन का, पाठन का, पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, समझने का। और वाकई एक बहुत अच्छी प्रस्तुति है और शीर्षक है पाठशाला पर आधारित चर्चा ध्वनिशाला। चलिए समय ज्यादा ना गवाते हुए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनिशाला में।
3: प्यारे बच्चों नमस्कार, मुझे मालूम है कि आप सभी कहानी और कविता सुनने के लिए बहुत बेचैन होंगे, बहुत समय से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो लीजिए, आज आपका इंतजार खत्म हुआ और आज हम एक सुनते हैं कविता। ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में शामिल है। क्या आप जानते हैं इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता में है एक ऊंट। जी हाँ, ऊंट। ये कविता ऊंट पर आधारित है। रेगिस्तान में यही ऊंट लोगों की सवारी बनने का काम करता है। तो आइए आज हम सुनते हैं एक कविता जिसका शीर्षक है ऊंट चला। तो तैयार हैं सारे बच्चे? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो कैसी लगी आपको कविता? ये कविता ऊंट के चलने पर है, लेकिन ये ऊंट चल कहाँ रहा है सोचिए। बिल्कुल सही, ये ऊंट चल रहा है रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में क्या होता है? क्या रेगिस्तान से जुड़ा हुआ कोई शब्द हमारी कविता में आया है? आपने जरूर ध्यान से सुना होगा, शाबाश। ये शब्द है बालू। और कविता में ये बात कैसे कही गई थी? बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम बालू में चलते हैं तो हमारा तो पैर धस जाता है, या कोई भी चलेगा तो उसका पैर बालू में धस जाएगा या फंस जाएगा, लेकिन ऊंट कैसे चलता होगा? आपने कभी ऊंट के पैरों की बनावट देखी है? उसके पैर गद्देदार होते हैं, तो उसके पैरों में ऐसी खास बात होती है कि वे ऊंट में धंसते नहीं हैं, और फिर ऊंट तेज गति से रेगिस्तान में चल लेता है। तो इसलिए कविता में यही बात कही है कि नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। एक बहुत मजेदार घटना मैं आपको बताती हूँ, और ये घटना है इसी कविता के बारे में। जब एक बार टीवी पे लाइव सेशन चल रहा था और आप जैसे नन्हे मुन्ने ये कविता पढ़ते हुए देख रहे थे, तो हमारे एक नन्हे दर्शक का सवाल आया था। और पता है ये सवाल क्या था? ये सवाल था कि करवट किसे कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। तो मन ने कहा कि करवट तो करवट होती है, अब इसका क्या अर्थ है? फिर बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद फिर मैंने कहा कि जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं, पहले हम चित्त सोते हैं, यानी कि पीठ के बल सोते हैं, फिर आप अपने शरीर को, अपनी पीठ को या तो दाईं तरफ मोड़ते हैं या फिर बाईं तरफ मोड़ते हैं। बस यही दाईं तरफ मोड़ना और बाईं तरफ मोड़ना करवट कहलाता है। लेकिन मैंने एक और बात के लिए कहा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल या तो हम सीधा चलाते हैं, और कभी साइकिल को हम दाईं तरफ मोड़ते हैं और कभी बाईं तरफ मोड़ते हैं, तो साइकिल का दाईं तरफ और बाईं तरफ मोड़ना करवट नहीं कहलाएगा। लेकिन ये खूब मजेदार बात थी कि करवट का मतलब क्या है। तो इसलिए मुझे कविता बेहद पसंद है और उसमें खास तौर से ये वाला हिस्सा कि जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। हम सोच सकते हैं कि ऊंट क्यों थक गया होगा, और आप ही सोचिए कि आप किन किन कामों को करते हुए थक जाते हैं। कहानी सुनते हुए तो आप नहीं थकते होंगे। मुझे भी कहानी कहना और कहानी सुनना बेहद पसंद है। आप बच्चों को भी तो कहानी सुनना बेहद पसंद है। और सोचिए, और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने में आप थकान महसूस करते हैं। मैं सोच सकती हूँ खेलने में। आप कहेंगे नहीं, खेलने में तो बहुत मजा आता है, और छुपन छुपाई खेलने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। सब बच्चे अपने गली मोहल्ले के बाकी साथियों के साथ खूब खेल खेलते होंगे। कोई चौपट की सड़क खेलता होगा, तो कोई स्टापू खेलता होगा, कोई बॉल से खेलता होगा, तो कोई गिल्ली डंडा खेलता होगा, और बहुत सारे बच्चे तो कंचे भी खेलते होंगे। तो हमारे सभी के अलग अलग तरह के खेल हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आप और हम कभी भी खेल खेलते हुए नहीं थकते। तो ऐसे कौन से काम होंगे जिन्हें करते करते आप थकान महसूस करते हैं। ये हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, या फिर आप लिखते लिखते थक जाते हो, या फिर आप बर्तन उठाते उठाते थक जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके और हमारे जिसमें हमें थकान महसूस होती है। यानी एक ही तरीके का काम घंटों घंटों घंटों करने में हमें थकान महसूस होती है। लेकिन ये बात तय है, जिस काम में हमें बहुत मजा आता है, जिस काम को करने में हमें बहुत आनंद महसूस होता है, उस काम को घंटों करने में हमें कोई थकान

बहुत सारे शब्द आए हैं जो झटपट बोलने का मजा देते हैं, और जब हम झटपट बोलने की बात करते हैं तो शब्द लड़खड़ा जाते हैं और हम जो बोलना चाहते हैं हम वो बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी बच्चे इस कविता के इस हिस्से को झटपट पढ़, तो मैं आपको सुनाऊं कुछ ऊंच। देखिए मुझसे भी नहीं बोला जा रहा, तो हम कोशिश करते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। दोबारा से सुनिए। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब आप इस हिस्से को जल्दी से बोलकर बताइए और आपको पता चलेगा कि ऊंट पूंछ ऊंची ऊंट पीठ ये सारे शब्द ऐसे लड़खड़ा गए, सब गडमड गडमड हो गए, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यही मजा है टंग ट्विस्टर का और यही मजा है ऐसे शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने का। तो आप इन शब्दों को दोहरा लीजिए, याद रख लीजिए और अपने दोस्तों से और अपने परिवार के सदस्यों से कहिए कि इस हिस्से को वे जल्दी जल्दी बोलकर बताएं। आपको इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। अब आप इस कविता को कोई नाम भी दे सकते हैं। हमने इस कविता को नाम दिया था ऊंट चला। हमने तो इस कविता को इसलिए नाम दे दिया था क्योंकि इस कविता में ऊंट के चलने की बात थी। आप अपने मन से इस कविता को कोई भी नाम दे सकते हैं। आप सिर्फ ऊंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं रेगिस्तान का ऊंट, ये भी शीर्षक अच्छा है। आप ऊंट भाई चले, ये भी कह सकते हैं। तो खूब मजेदार शीर्षक आप इस कविता के लिए तय कर सकते हैं। आप कुछ भी रखिए, हमें आपका तय किया हुआ सब पसंद आएगा। आप बच्चे हैं ही इतने प्यारे, मुझे मालूम है कि आप अपनी कविता का शीर्षक भी बहुत प्यारा सा रखेंगे। आपने कविता में एक और खास हिस्से पर ध्यान दिया होगा, मैं उसे दोहरा देती हूँ आपके लिए। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब इसमें खास बात क्या है? इस कविता के इस अंश में खास बात है इतना ऊंचा ऊंट चला। कविता में कहीं बताया ही नहीं गया कि ऊंट कितना ऊंचा है, लेकिन हाँ उसकी ऊंचाई को बताने के लिए इतना शब्द का इस्तेमाल किया है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब आप सब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा ऊंट होगा, तो मैं कुछ शब्द कहती हूँ, कुछ चीजों के नाम बताती हूँ और आप बताइए कि क्या ऊंट इतना ऊंचा होगा। तो पहला क्या है? ऊंट कितना ऊंचा होगा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना या बिजली के खंबे जितना। अगर आप इन तीनों में से किसी को भी सही नहीं मान रहे तो फिर आप खुद तय कीजिए कि आपके हिसाब से ऊंट कितना ऊंचा होगा। हमने यहाँ ऊंट के ऊंचे होने की बात की, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी तो हैं जो बहुत मोटे हैं। बिल्ली मोटी है? आप कहेंगे हाँ, लेकिन अगर मैं उसके सामने कहूँ कि गैंडा मोटा है तो आप कहेंगे हाँ, और अगर मैं गैंडे के सामने ये कहूँ कि बिल्ली मोटी है तो आप कहेंगे ना। तो आपकी हाँ और आपकी ना ये निर्भर करती है कि हम किन किन जानवरों की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम जानवरों को अलग अलग देखें तो हमें लगता है कि ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये दुबला है। हमने तो अकेले अकेले जानवरों के नाम लिए तो हम मोटा पतला दुबला ऊंचा नीचा हम ये तय कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर हम दो दो जानवरों के नाम लें तब आप ये तय कर पाएंगे कि कौन मोटा है और कौन मोटा नहीं है? अगर मैं कहूँ कि खूब मोटी बिल्ली आई घर में, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि बहुत मोटी सी बिल्ली खिड़की से आई और रसोई घर में कूदी और उसने दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि चूहा भी आया, ठीक, तो चूहा तो बहुत छोटा सा है। अब चूहा हमारे लिए छोटा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि उस घर में एक चीटा भी आया, तो अब आप कहेंगे चूहा बड़ा है। तो बस यही शब्दों का हेर फेर है और आप ये तय करने में थोड़ी दिक्कत तो महसूस करते होंगे कि ऊंचा कौन है, मोटा कौन है और छोटा कौन है। तो अभी हमने ऊंट के ऊंचे होने की बात की, अब हम मोटे होने की बात करें। तो
प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए,

ये हाथी कितना मोटा होगा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। सब बच्चे सोचेंगे कि माँ के पास संदूक कितना बड़ा होगा, या फिर ऊंट जितना, या फिर पहाड़ जितना। तो बच्चों को मैंने कहीं फंसा तो नहीं दिया? नहीं, यही तो मजा है शब्दों का। तो हाथी कितना मोटा है, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, या ऊंट जितना, या फिर पहाड़ जितना। या आप कोई और ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप हाथी के मोटे होने के बारे में बता सकें। तो चलिए, हमने बात की ऊंचे होने पर, मोटे होने पर, और अब हम बात करते हैं छोटे होने पर। जैसे ये हमारे बच्चे छोटे मोटे से हैं, वैसे चींटी भी छोटी सी है। तो चींटी कितनी छोटी होगी, सोचिए, चीनी के दाने जितनी। तो आप बच्चे कहेंगे, नहीं, इतनी छोटी तो नहीं होती। तो चावल के दाने जितनी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इलायची के दाने जितनी, तो आप बच्चे कहेंगे कि नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो चींटी आपके हिसाब से ना तो चीनी के दाने बराबर जितनी छोटी है, ना चावल के दाने जितनी छोटी है, और ना ही इलायची के दाने जितनी छोटी है। तो आप अपना शब्द खुद तय कीजिए कि आपके हिसाब से चींटी कितनी छोटी है। तो हमने इस कविता के आधार पर ऊंट के बारे में बात की, हाथी के बारे में बात की, और चींटी के बारे में बात की। तो प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से और बहुत सारे जानवर सोच सकते हैं। जैसे हम अगर पूंछ की बात करें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी पूंछ या तो बहुत छोटी सी है, या बहुत बड़ी है, या फिर बहुत झबरीली है। झबरीली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं और बहुत फूली हुई सी दिखती है, जैसे गिलहरी की पूंछ होती है झबरीली। तो आपने अपने आसपास तरह तरह के जानवर देखे हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें से ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ बहुत छोटी है, या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ बहुत लंबी है, या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ ना तो बहुत छोटी है और ना ही लंबी है। लेकिन आप प्यारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनकी पूंछ हमेशा मुड़ी रहती है। मैं समझ सकती हूँ आप सभी कुत्ते के बारे में बात कर रहे होंगे कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, वह कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तो आपने गाय की पूंछ भी देखी है, भैंस की पूंछ भी देखी है, हाथी की भी पूंछ देखी है। अब हाथी तो इतना मोटा और इसकी पूंछ इतनी छोटी सी। तो और तरह तरह के जानवर कौन से हैं? ऊंट की भी पूंछ होती है, शेर की पूंछ होती है, और बंदर की पूंछ होती है, और लंगूर की पूंछ तो बाप रे बाप कितनी लंबी होती है। वह इतने ऊंचे पेड़ की एक टहनी पर बैठता है और उसकी पूंछ नीचे जमीन को छूती है। तो लंगूर की पूंछ तो बहुत लंबी होती है। तो अब आप ये खेल खेलिए, आप ये प्रश्नोत्तरी कीजिए अपने घर में, और आप एक कागज पर सारे जानवरों के नाम लिख लीजिए, और ये अपने आप तय कर लीजिए कि किसकी पूंछ छोटी है और किसकी पूंछ बड़ी है। और आप फिर एक एक पर्ची खोलते चले जाइए और सबसे पूछते जाइए, अच्छा बताइए कि गधे की पूंछ कैसी होती है, छोटी है या बड़ी है? लंगूर की पूंछ कैसी है, छोटी है या बड़ी है? ये खेल खेलने में आप सभी को बहुत मजा आएगा।

ये कविता सुनी ऊंट चला। कैसी लगी आपको कविता? यकीनन आपको इस कविता को सुनने में बहुत मजा आया होगा। भाई मुझे तो कविता गाने में बहुत मजा आया। तो आज हम यहीं विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।

0: के उपचार से ऊंट का दर्द मिटा तो लगा ऊंघने। तब उपदेश दिया उर्मी ने,
1: ऊंट का है बस एक उपाय, मिलके

0: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: वाकई बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए सिर्फ सुनो साधन 90.8 FM पर। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा बच्चों, आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर 01204060205 पर। वाकई कहानी के जरिए, कविता के माध्यम से और इस शीर्षक ध्वनिशाला के जरिए बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं आपने सीखी होंगी, समझी होंगी, जानी होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे, है ना। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर कि इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है। और इसके अलावा सुनो साधन 90.8 FM जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं और वहां पर भी आप अपने मन की बात हमसे साझा कर सकते हैं। सुनते रहिए सुनो साधन 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान। उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंदली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रैना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गरीब।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: संविधान शब्द सुनते ही जो तस्वीर हमारे मन में उभरती है वह है कानून की किसी मोटी सी किताब की। हकीकत यह है कि संविधान का छपा या लिखा तक होना जरूरी नहीं। संविधान का अर्थ है, खासकर जनतंत्र में, वह व्यवस्था या परंपरा जिसके अनुसार देश का शासन राजकाज चलाया जाना है। इसके साथ साथ भारत का संविधान उन सपनों और आदर्शों की धरोहर भी संजोए हुए है जिसमें आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक करोड़ों हिंदुस्तानियों की हिस्सेदारी रही है। भारत के संविधान के सार को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है।
1: संविधान का अर्थ हमेशा एक लिखी हुई किताब नहीं होता। इंग्लैंड का संविधान सिर्फ परंपरा पर टिका है। भारत के संविधान की एक खास बात यह है कि यह अमेरिका के संविधान की तरह लिखा हुआ है। भारत का संविधान हमें यह बताता है कि आजाद हिंदुस्तान में राजकाज कैसे चलाया जाता है और नागरिक तथा राज्य के बीच क्या रिश्ता है। हिंदुस्तान में अमेरिका और ब्रिटेन में अपनाए गए सरकार के अच्छे तरीकों का तालमेल बैठाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ हमारा संविधान आजादी की लड़ाई के दौरान जो इरादे किए गए थे उनको पूरा करने का संकल्प भी है। यह बात याद रखने लायक है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई सिर्फ विदेशियों को यहाँ से निकालने के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि इसका एक सबब आम आदमी के लिए बुनियादी अधिकारों को हासिल करना भी था। गांधी और नेहरू का सपना था हर आंख से हर आंसू पोंछना, गैर बराबरी को मिटाना और देश को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाना। भारत का संविधान वह रूपरेखा हमारे सामने रखता है जिसके अनुसार नए भारत के निर्माण की योजना बनाई गई। संविधान के सार को समझने का काम शुरू करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यूं तो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में, पर जैसे जैसे यह चिंगारी लपट में बदली इसका रूप बदलता गया। पहले पहल इसका मकसद था अंग्रेजों को निकाल खदेड़ने का। बाद में यह सपना भी उसके साथ जुड़ गया कि आजाद हिंदुस्तान में समाज में फैली गैर बराबरी को मिटाना होगा और सब तरह की जातियों को, बुराइयों को मिटाना होगा। इसमें जमींदारी और सामंती तौर तरीकों की तमाम बुराइयां तो थी ही, छुआछूत और जातपात की वजह से मनमुटाव और भेदभाव भी शामिल था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की कल्पना में राजनैतिक स्वाधीनता के साथ साथ यह सब बातें भी शामिल थी। भारत को गणराज्य बनाने का संकल्प भी इसी मौके पर किया गया। आजादी की इस लड़ाई में करोड़ों देशभक्तों ने हिस्सा लिया और कुर्बानियां दी। आखिर हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया।

आजादी हासिल करने के बाद सबसे अहम सवाल यह उठा कि देश को कैसे चलाया जाए, सरकार का तरीका कैसा हो। आजादी को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी रहा था। इसी काम का बीड़ा उठाया संविधान बनाने वाली सभा ने। इसका गठन दिसंबर 1946 में किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया डॉक्टर अंबेडकर को। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। संविधान का प्रमुख अंग इसकी भूमिका, प्रस्तावना या प्रीएम्बल है। संविधान के सार को समझने के लिए यह खास तौर से उपयोगी है। संक्षेप में ही सही, इसमें उन सभी बातों का साफ साफ जिक्र किया गया है जिनसे हमारे संविधान के अलग अलग हिस्सों के बारे में, उनके आपसी रिश्तों के बारे में सही जानकारी मिलती है। इस प्रस्तावना से उन आदर्शों और मूल्यों का पता चलता है जिन्हें आजादी की लड़ाई के दौरान अपनी मंजिल समझा गया था। यह है संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, जनतंत्र और गणराज्य वाली प्रणाली। इनके साथ साथ न्याय, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता को अहमियत देने की, कुल मिलाकर इन सभी मूल्यों का सबब एक है। देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। व्यक्ति की गरिमा को बनाए बचाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि नागरिक को ऐसे बुनियादी अधिकार दिए जाएं जिनकी हिफाजत कानून करता हो, ऐसे अधिकार जिन्हें कोई उससे छीन न सके। इसीलिए हमारे संविधान में बुनियादी अधिकारों का जिक्र सबसे पहले किया जाना जरूरी समझा गया। यही वह नींव है जिस पर भारतीय जनतंत्र की बुलंद इमारत खड़ी है। जीने का और आजाद रहने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान की 21वीं धारा में यह कहा गया है कि हर नागरिक को जीने का और आजाद रहने का बुनियादी अधिकार है। न तो किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी बनाया जा सकता है और न ही उसे शारीरिक यातना दी जा सकती है। इसके साथ जुड़ा अधिकार शोषण से मुक्ति का अधिकार है। इसके बारे में धारा 24 विस्तार से बतलाती है। इतना ही महत्वपूर्ण है समानता का अधिकार, अर्थात कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं। जन्म या धर्म के बिना पर कोई भी अपने को दूसरों से बड़ा नहीं समझ सकता। इस अधिकार के बिना बाकी बुनियादी अधिकारों को लागू करने की बात सोची ही नहीं जा सकती। संविधान की धारा 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। इस अधिकार को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत सारे कानून पास किए गए हैं। छुआछूत मिटाने वाला कानून, बधुआ मजदूरी समाप्त करने वाला कानून, समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने वाला कानून। समानता का अधिकार यह नहीं कहता कि समाज के पिछड़े और गरीब तबके को आगे लाने के लिए, औरों के बराबर बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। समानता के अधिकार का असली मतलब है अवसर की समानता। आरक्षण के बिना सदियों के पिछड़े और दबाए तबके को अवसर की समानता का लाभ मिल ही नहीं सकता। दूसरा महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब यह नहीं कि आजाद हिंदुस्तान में नागरिकों को निरंकुश ढंग से मनमानी करने की छूट है। इसका अर्थ है सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचारों को और इच्छाओं को शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट करने की आजादी। स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता की 16वीं धारा इस अधिकार के बारे में बतलाती है। कुछ लोगों की समझ में यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद इसके बिना बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला उठाया ही नहीं जा सकता और न ही न्यायालय के सामने पहुंचाया जा सकता है। जनतंत्र को कारगर बनाने के लिए यह अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में न तो कोई उम्मीदवार अपने पक्ष में जनमत बना सकता है और न ही कोई मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि या चुनी सरकार के प्रति अपनी खुशी नाराजगी जाहिर कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता, इससे अराजकता को ही बढ़ावा मिल सकता है। इसीलिए इस बुनियादी अधिकार पर उक्त तर्कसंगत पाबंदियां लगाई गई हैं। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विचार, सांप्रदायिक बैर बढ़ाने वाले विचार, मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब करने वाले विचार और अनर्गल गाली गलौज को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पर्दे के पीछे नहीं फैलाया जा सकता। भारत के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति के साथ साथ धार्मिक मान्यता और पूजा उपासना की स्वतंत्रता भी बुनियादी अधिकार के रूप में हासिल है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसका फैलाव एक महाद्वीप जैसा है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे सांस्कृतिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी या विविधता या बहुलता ही है। हम इसे हर हालत में बचाए रखना चाहते हैं। इसीलिए एकता या समता का अर्थ एक रास्ता या नकली जोर जबरदस्ती से थोपी गई समानता नहीं समझा जा सकता। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ राज्य का कोई सरोकार मजहब से नहीं। धर्म और मजहब नागरिक के जाती जिंदगी से जुड़े मसले हैं। इसीलिए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को बुनियादी अधिकार का दर्जा दिया गया है। विचारों और धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्रता के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में शांतिपूर्ण संगठन और प्रदर्शन आंदोलन की स्वतंत्रता को भी बुनियादी अधिकारों में शामिल किया गया है। किसी भी जनतंत्र में इन अधिकारों का महत्व आसानी से समझ में आता है।
1: ये जो गरीब लोगों का हकों का जो हनन हो, उनको जो मौलिक अधिकार जो न मिलता हो, तो कोई भी सामाजिक संस्था अदालत में जा सकती है उन लोगों की तरफ से, और उन्हें को मिलना चाहिए जो उनका हक, उसके बारे में कोर्ट में कार्रवाई कर सकती है। और हमने कहा कि इस बारे में जो हमारे जो सामाजिक संस्था है जो कोर्ट अदालत में जो गरीब लोगों का केस लाना चाहती है, तो इसीलिए वकील करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पत्र जो कोर्ट अदालत को लिखे तो वो भी उतना काफी होता है, क्योंकि हमारे जो सामाजिक संस्थाएं भी बहुत ऐसे कुछ पैसे वाली नहीं है। इसीलिए वो लोग को भी जो कोर्ट में जो केस अदालत में केस लाना हो तो पत्र लिखकर भी कर सकते हैं।
2: नागरिकों ने अपने मूल अधिकारों को काफी हद तक समझा है और उन्होंने इस बात की कोशिश भी की है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें और उनको मनवाएं, और काफी हद तक इसमें सफलता भी उन्होंने प्राप्त की है। और मैं न्यायपालिका को इस बात का श्रेय दूंगा कि उन्होंने व्यक्ति के जो मूल अधिकार थे उनको कार्यान्वित करने में काफी सफल भूमिका निभाई है।
0: भारत के संविधान की एक खासियत यह भी है कि इसमें अधिकारों के साथ साथ हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी तय किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर शामिल है। पर्यावरण की रक्षा, सांस्कृतिक धरोहर की हिफाजत आदि ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें बुनियादी अधिकारों का दूसरा पहलू कहा जा सकता है।

0: सिर्फ नागरिक के ही नहीं शासन के या राज्य के कर्तव्यों के प्रति भी भारत का संविधान बहुत जागरूक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाला हिस्सा इन्हीं की रूपरेखा हमारे सामने रखता है।
1: अक्सर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में ज्यादा अहम चीज क्या है, मूलाधिकार या राज्य की नीति निर्देशक तत्व। असल में इन दोनों में टकराव नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
0: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सरोकार आर्थिक सामाजिक जीवन की बेहतरी से है। कुछ सीधे सीधे राजनीतिक जीवन से भी जुड़ते हैं। संविधान बनाने वालों का सोच यह था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए नागरिक के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर बेहतरी की जरूरत है। वर्षों की गुलामी और समाज में फैली गरीबी की वजह से कमजोर तबके को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए लोकतंत्र में उसकी हिस्सेदारी के लिए ही इन नीति निर्देशक तत्वों की बात सुझाई गई। हर नागरिक के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, पंचायती राज, नशाबंदी, भूमि सुधार आदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना भी इस सूची में शामिल किया गया है।
2: मूल अधिकार तो सेक्रेट है, जैसे ही उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मिली हुई है, क्योंकि अगर मूल अधिकार खत्म हो गए फिर तो प्रजातंत्र खत्म हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्व, ये जो कहा गया था उस वक्त कि ये डेकोरेशन है, वो तो गलत है। ये तो वाद विवाद का हिस्सा है। लोग कहते हैं कि तुमने हिंदुस्तान में 50 साल में सबको शिक्षा क्यों नहीं दी। भाई आपने किया क्या? ये तो आपके संविधान की मांग थी, आप उसके लिए उत्तरदायी थे। संविधान ने जो भी चीज लिखी थी आप उत्तरदायी, उत्तरदायित्व इसमें मॉरल था, इसमें मान्यता का था। तो चौथा जो हिस्सा है नीति निर्देशक तत्व, ये तो मान्यताओं का है। लेकिन शासक जो है मान्यताओं में गड़बड़ करते रहते हैं, तो उनको इसके जरिए रिमाइंड करते, डांट लगाते हैं। और दूसरे दल वाले कहते हैं अगर हम आएंगे, अगर हम शक्ति में आएंगे तो ये तो प्रजातंत्र होता है, ये कोई तो नहीं है कि एक ही दल रहेगा। तो कहते हैं इन्होंने नहीं किया था, देखिए हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व में है। सामाजिक न्याय ये सबको पता था, एक दिन में तो होने वाला है नहीं। और जो हमने इनहेरिट किया था, जो हमने लिया था, उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो ये किस्म का भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए गाइडेंस थी। लेकिन संविधान बनाते वक्त ये बार बार कहा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ड यूज किए गए कि ये डेकोरेटिव पीस है, कि ये कोई शोभा के लिए, हमें संविधान को एक सुंदरता दिखाने के लिए एक हम खाम खा की बात कर रहे हैं।
0: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निशुल्क प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। समाज में फैली गैर बराबरी को मिटाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से मिलें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बच्चों के कल्याण की बात भी सुझाई गई है। इसीलिए हमारे संविधान में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश साफ दिया गया है। इसी तरह सदियों से समाज में महिलाओं का जीवन काफी कठिन रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस तबके की कमजोरी और मजबूरी दूर करने के लिए हिदायतें दी गई हैं। आजाद हिंदुस्तान में महिलाओं के कल्याण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। बाल विवाह का उन्मूलन, समान काम के लिए समान वेतन और दहेज प्रथा की कुरीति को मिटाना इनका मकसद है।

सामाजिक और आर्थिक जीवन में बेहतरी के लिए, पिछड़ों और दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक जीवन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पंचायती राज को शामिल किया गया है।

0: संविधान की कल्पना क्या है राष्ट्रीय एकता की? कि सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हो, सबका मौलिक अधिकार का आदर हो, सबको अपनी जो बेसिक नीड्स कहते हैं, आवश्यकता है, वो मिले। पार्ट फोर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें काफी वादे किए गए हैं। तो संविधान की कल्पना ये थी कि राष्ट्रीय एकता इस तरह की होगी जिसमें न्याय की भावना हो और पिछड़े समाज के लिए आदर हो और उसका हक की रक्षा हो, जिसको मैं कहता हूं जस्ट इंटीग्रेशन, न्यायपूर्ण, न्याय से भरपूर राष्ट्रीय एकता।
1: यह बात याद रखने लायक है कि आजादी से आज तक बहुत सारे ऐसे कानून पास किए गए हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सिर्फ अमूर्त या आदर्श नहीं रहने देते बल्कि एक ठोस रूप देते हैं। इन कानूनों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है और इनके आधार पर नागरिक बुनियादी अधिकारों की तरह ही अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। वैसे यह अंतर बना हुआ है कि बुनियादी अधिकारों की हिफाजत न्यायालय करते हैं, उन्हें ऐसी कोई जिम्मेदारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में नहीं सौंपी गई है। यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आज़ादी के लिए लड़ने वालों का सपना अभी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। समाज से गैर बराबरी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है, सिर्फ कुछ कम हुई है। हाँ, इस बात पर संतोष किया जा सकता है कि हम अपनी तय की दिशा में बढ़ रहे हैं और संविधान के सार के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ हमारी गति क्रमशः तेज होती जा रही है।
0: हम लोग संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं कि ये 1950 में जब बन गया और 1995 में भारत बदल चुका है, भारत का समाज बदल चुका है, भारत के समाज में मांगे बदल चुकी हैं, मान्यताएं बदल चुकी हैं, सरकार से एक नई नई चीजें मांगी जा रही है, नए नए दल आ रहे हैं, तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि क्या समाजवाद या इसके आधार पर जब हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि यह परिवर्तन हो रहा है, ये संविधान वो नहीं है जो 1950 में था, इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं, और नहीं तो वो संविधान खत्म हो जाते हैं। अगर आप उसको समाज के परिवर्तन के साथ मेलतोल नहीं करें, जोड़े नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस आधार पर लोगों में एक बड़ा असंतोष है कि साहब समाज बदल गया, संविधान में भी आपसे कहा गया, लेकिन जो सरकारें हैं वो इसको नहीं करती। आपने कहा था आपको रहने के लिए घर मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, तो आपने संविधान में जो बात कही थी उस वक्त कह के आप चुप हो गए, लेकिन 1950 में लोग मांग कर रहे हैं। तो संविधान भारत का एक लिविंग डॉक्यूमेंट होते हुए इसने अपने ट्रायल एंड एरर से आदमी सीखता है, क्योंकि आदमी को नई चीजें करनी होती हैं, तो भारत का संविधान ट्रायल एंड एरर में तो ठीक उतरा है।
2: कोई भी संविधान पत्थर की लकीर नहीं होता। बदलते राजनीतिक और आर्थिक हालात ऐसी चुनौतियां पेश करते हैं जिनका सामना करने के लिए संविधान में संशोधनों की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान इसका अपवाद नहीं। मगर ज्यादा अहम बात यह समझ लेना है कि लकीर का फकीर बने रहने की अपेक्षा यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान बनाने वालों की मंशा क्या थी। इसी सिलसिले में संविधान के सार को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक फैसलों में यह बात कही है कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर, और जिसे समझने के लिए संविधान के सार को हमेशा याद रखना जरूरी है। इस बुनियादी ढांचे में शामिल है मूलाधिकार, संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक चुनाव। इसमें कोई फेरबदल किसी संशोधन के द्वारा नहीं किया जा सकता। सच है कि आज आज़ादी के 50 साल करीब करीब बीत जाने के बाद भी सभी सपनों को आज़ादी की लड़ाई के साकार नहीं किया जा सका है, और संविधान में जिन आदर्शों को प्रतिष्ठा दिलाई गई है वह सब लागू भी नहीं किए जा सके हैं। फिर भी यदि लचीलेपन की कसौटी पर कसें तो भारत का संविधान खरा उतरता है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 5 साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
1: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
0: तो नहीं है आपके आहार में दम,
1: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
0: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
3: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपटन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। ए बाबू, हाँ बोल दे।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहां की अमर रह गई और वो है इनकी।
2: ये तो तुम जैसा।
3: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है। कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
2: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या टराने लाए हो?
3: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना?
2: अरे
3: अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

एक बात बताओ, क्या हम सच्ची में सोलमेट्स हैं?

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: Nalanda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं।

0: कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीवी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं, टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
2: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
3: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, अस्तरों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म नहीं, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
2: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
5: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।